साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: ऐसे ही तू मुझे मिलता रहे मगर रोजाना रोजाना, तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, एवरी सिंगल डे। ब्यूटिफुल मैसेज हियर फ्रॉम द माधुरी दीक्षित ऑन दिस शो। मोहिनी मोहिनी, हैव अ ग्रेट डे माय फ्रेंड। निर्मल जी इन हाई विकम, थैंक यू सो मच।
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय स्टार प्लस।
2: माय फ्रेंड, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है। व्हाट अ प्लेयर।
3: वॉच इंडियाज टॉप 1% एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार।
0: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Out in cinemas this Friday, the franchise concludes with part 3, Drishyam ki baat kar rahi hoon main. Lucky Ali on the vocals, this one taken from Drishyam, the conclusion, Muskura Do. Jahan bhi aap sun rahe hain, आप किस वजह से इतना मुस्कुरा रहे हैं बताना चाहेंगे? व्हाट्सएप मी। गुड मॉर्निंग।

0: एन एवरग्रीन हिट फ्रॉम धर्मात्मा। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। मुकेश जी एंड कंचन जी, इसे आप सुन रहे सनराइज पर आज वेंसडे द 30th of September की सुबह शबनम साही के साथ सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हमारा लिसनर्स चॉइस
1: ब्रॉट टू यू बाय स्टार प्लस।
2: माय फ्रेंड, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है। व्हाट अ प्लेयर।
3: वॉच इंडियाज टॉप 1% एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार।
0: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Sophie in Scotland, Ravinder in Raynham, Leela in Redhill, and to all those who voted, thank you so much. Buhe Bariyan on the UK's biggest Asian mix. My name is Shabnam Sahi.

0: and Dairy Awards 2026. It's simply desilicious.
1: आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ. इट्स अ वेंसडे, इट्स द लास्ट डे ऑफ द मंथ. मेरा और आपके साथ पूरे 12 बजे तक मैं कविता टेक्स ओवर, किकिंग ऑफ द लास्ट एंड फाइनल आवर ऑफ द शो विद एन आतिफ असलम डबल बिल. टाइगर जिंदा है एंड लव यात्री फॉर योर लिसनिंग प्लेजर.
2: Back-to-back songs with Ambala Sweets, celebrating serving the community for 60 years. Check online at ambala.co.uk for your nearest store or 1 hour click and collect available. Ambala Sweets now open on Desborough Road, High Wycombe.
3: Ambala, 100% vegetarian.

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Celebrating 36 years of excellence.
1: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
0: This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
2: Sunrise Radio.
3: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉर्ट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज। 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।
4: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
5: नहीं बेटे, के लिए जस्टिस चाहिए।
6: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
4: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
7: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
4: The end we've been waiting for. दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर।
7: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
4: Releasing nationwide by Zee Studios.
0: See Karan Aujla live.
8: Hakna pade tu meri baan.
0: When he brings his P-pop culture tour to Birmingham, London, and Manchester this October with special guest Icky. Final tickets on sale at livenation.co.uk. Karan Aujla live.